0: अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्ग सम्बद्धाः, एका च राजमार्ग सम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 तमवर्षात् 31,2,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,300,000 कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इण्डिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तम् अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि, दृश्यचित्राणि च चीनदेशस्य अरुणाचलप्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्ध विषय गंभीर अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उतवा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथि अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथि आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपति पदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानं अद्य अपराह्णे 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
2: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈಗ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆ. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು.
3: ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕೇಳುಗರನ್ನ ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ. ನವಯುಗದ ಹೊಸಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ.

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती

0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडेम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4-laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, information and

0: साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली

0: में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे।
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया।

0: जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता।
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार।
0: ओहो बेटा बताता हूँ, सांस लेने दे, बूढ़ा आदमी हूँ। सुन ध्यान से।
1: जी।
0: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना।
1: जी।
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती।
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था।
1: जी।
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
1: जी।
0: समझ गई ना।
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
1: जी।
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
1: जी।
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी।
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं।
1: जी।
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना।
1: जी।
0: अरे बेटा नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3:30. ಈಗ ಕೇಳಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯಾಯವಾಣಿ
6: ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ನ್ಯಾಯವಾಣಿ. ಸಹಯೋಗ

नमस्कार, पेशे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोई जूमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद में पहुंची और FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय नियमानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुंचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए।

0: ये रूबरू कराने के हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने, आप कहते हैं ना कि अपने आत्मनोबल या आत्मबल तो हमें है, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल-ए-तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है, खास तौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पडदौरा गाँव है, वहाँ बीता है मेरा। परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से, और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नजर आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है, काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप, शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है, और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का, उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?

0: ये मेरी पहली अटैम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी SSC के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा।
1: जी, तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था। लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करना, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया दिया है
1: पर उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफ़र आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुँची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
0: हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सबके लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है।
1: जी, पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियाँ, क्या कुछ होता है SSB में, जहाँ जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो जीते हैं, हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी इनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
0: ये होता है। फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है।
1: जी,
0: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियां तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियां वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताएं फौज में कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं।
1: जी, लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवाएं देने के लिए?
0: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए CTC सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। मेंटल टफ चीज़ को हमने सिखाया गया उसको।

0: एएनओ जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SHQ गैंगटॉक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं, ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, सहस्त्र सीमा बल। साझा कर चुकी हूं कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं। यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी। 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने। ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: ये सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था। रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा और जो हमारे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है तो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देश प्रेम रह जाता है
1: जी।
0: अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है।
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराती रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज मैंने तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छी तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: ना तो है ही नहीं, बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूँगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं।

0: होती है उसके वक्त, उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश पर होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं। तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
0: जी, सब कुछ आसान हो जाता है। घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट ना जाए, दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा सतर्क रहना, हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन कर निहित है, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है, ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई जिले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद। ये सफलता मेरी नहीं, पूरी टीम की सफलता है जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था, ऑपरेशन सफल किया, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की, रिलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। एसएसबी इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर
1: बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि एसएसबी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जमुई जिला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है, इसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं, इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिल के इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर इसको सभी के लिए गर्व की बात
0: है, हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको

0: उसको सुचारू करना है। आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
1: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
0: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग, आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
1: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
0: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
1: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
0: जी, जैसा कि हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिर में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात, उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
1: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीकों से करने की प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत आप अपने ऊपर और लेते हैं और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और अभी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात जरूर आती होगी।
1: हमेशा कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग।
0: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे DG महोदय के द्वारा भी DG सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ डर आता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
0: जी, इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार है वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
1: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहां भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाए, करना हर किसी के दिल में हुक जरूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी जुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पे काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पर काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जब जिस जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए, एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी आपको मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो तीन साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होते रहती है।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
0: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई, तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
1: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती
0: है। अरे वाह, क्या बात है मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं, जब आपके साथ है यूनिट में है तब भी एंजॉय कर

0: रही हैं तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
1: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
0: अच्छा ये बताइए कि जब घर आप जाते वापस, जब अपने यूनिट जाते होंगे तो माँ घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा।
1: वो सबके लिए होता है,
0: वो सबके लिए होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो एक महीने में खत्म होना है या वो उससे पहले खत्म हो जाता है।
1: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी उस सबके लिए होता है।
0: हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
1: जरूर जरूर,
0: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आयो ये बताओ क्या लेकर आए हो,
1: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
0: अच्छा ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
1: एक टीम रहता है वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
0: और रेडियो?
1: रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
0: किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो हैं ही, सहकर्मी तो हैं ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
1: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज़ होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
0: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
1: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
0: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
1: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
0: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ। तिरुचिरापल्ली विजय आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदय पूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें। आप
1: सभी को जय हिंद मेरा
0: जी। बहुत संदेश भेजने के लिए, अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें?
1: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, डिसिप्लिन आ जाएगी आगे।
0: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब, अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है। यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हम शिव शंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं। मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है। संदेश भेजने वालों में पंडित सारस्वत संदेश भेज रहे हैं, धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में है, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSP का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं। KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है। यहाँ पर दोस्त आपका नाम में KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है, क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है। सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके संदेश हम तक पहुँचे इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारी बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

0: वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आकाशवाणी बेंगलुरु। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಬೇವೂರಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸೋಬಾನೆ ಪದ.

0: ಸಿರಿಗಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
1: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया. सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की. झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई. सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित. और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी. श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है. हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी.
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है. अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे. समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं. इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. एक रिपोर्ट.
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए. न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता. न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित. याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं. झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी. समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी.
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है. तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा तीन स्तंभ उच्च साक्षरता दर प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं तीन स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित आठ मुद्दों में से पांच मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
5: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
6: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड

0: कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
2: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलबर्टो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
1: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and Food Safety Officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A report.
6: The high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. The other members of the high-powered inquiry committee are former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla, and retired Meghalaya Director General of Police Dr. L.R. Bishnoi. A 3-judge bench comprising Chief Justice of India Suryakant, Justice Joymala Bagchi and Justice V. Mohanna passed the order while hearing a batch of writ petitions concerning the nationwide demonstrations over alleged examination paper leaks. The high-powered inquiry committee has been directed to deliver an interim report on its initial findings at the earliest. Swati Rakheja, Akashvani News, Delhi.
5: The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments May through the 11th to 13th JPSC Civil Services Examination and the Food Safety Officer Recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing three separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The court directed that the selected candidates be reinstated, observing that they could not be removed without following due process and the principles of natural justice. The court sought a response from the state government and the Jharkhand